0: एनर्जी भी आदम के
1: क्यों घुमा घूम कर रहे हो देख नहीं रहे हो मैं घोड़े को घास खिला रहा हूँ
2: अम्मा यार हर पांच मिनट के बाद तुम टांगा रोकते हो और घोड़े को घास खिलाते हो आखिर ये घोड़ा है कैसा तुम्हारा
1: बस बस साहब वहीं रुक जाएगा आगे मत बोलिए देखिए साहब जो जी मैं मुझे बोल दीजिए लेकिन मेरे घोड़े को कुछ मत बोलिए घर में मेरी बीबी मुझे बहुत डांटती है